कर्जा असी ती पकिया संपकिया फापकी बोली जमानो बंजा लून लगे के बाय बदाती दुनिया ला सिग जंके न बोला न दरकं कमिला फर्मले जम्मा मामुदू